समय सूत्र देशना पर महाकारुणिक बुदुरजानन वहन्से विसिन लोक सत्वया वेत अनुकंपावेन देशना करन लद आरक्षक परित्राण देशना अतरिन महा समय सूत्र देशनाव अति विशेष वोकी तारका समूहयक पिरिवरा बेबलिन पूर्ण चंद्रयासे एदा कपिल वस्तु नगरा सन्ने महा वनपित एकालोक करमिन समस्त महा विश्व तलेम बुद्ध ज्ञा चत्रेट हसु करमिन पवत्मन लद मे देशना विशेषेन्म सजायना किरिन्ने सम्यक दृष्टिक दिवितेवताउं वहन्सेलागी एल्म बेल्महा आशीर्वादे अपेक्षावेदे एदा बुदुरजानन वहन्सेगी श्रीपाद मूलेहि गौरवा विवादन पूर्वकव दस दहसक चक्रावाट्यन सित सपमिनि महानुभाव संपन्न दिव्य गणया बुदुरतुन सरण गिय यम पिंवते वेनम ए अय किसीदा अपायगामी वन्नी नटे कियमिन बुद्ध प्रमुख श्रावक संघ रत्नयट स्वकीय अत्यंत गौरवय पुदकलह मे वनाही विश्वगत दिव्य शक्तिन एकराशि करमिन जीवितेत एलेमिन सकलांतराय दुरुकुट सित शांतिय सलसीमेला महोपकारी वन परित्राण धर्मयके सियलु देवियन्के आशीर्वादय पिनिस ए महानुभाव संपन्न महा समय सूत्रय सदहे सितिन सज्ञानय करुण लबन्ने पूज्य गणी कुमरे शांत स्वामी वहां